0: दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रोमांच लगातार परवान चढ़ रहा है। कोर्ट पर भारतीय खिलाड़ियों की जुनून, दर्शक दीर्घाओं में लहराते तिरंगे और शानदार रैलियों पर दर्शकों की तालियों ने भारत की मेजबानी को और भी खास बना दिया है। बेशक 5 बार की विश्व चैंपियनशिप की मेडलिस्ट पीवी सिंधु और छुपेरुस्तम साबित हो रहे आयुष शेट्टी की चुनौती भले ही थम गई हो, लेकिन भारतीय बैडमिंटन की तस्वीर अब भी उम्मीदों से भरी है। युगल में भारतीय खिलाड़ी अब भी पदक की रेस में डटे हैं। दिल्ली की धरती पर अपने ही दर्शकों के सामने अब भारतीय शटलरों के पास हार की निराशा को पीछे छोड़कर नए जोश के साथ आगे बढ़ने का मौका है, क्योंकि चैंपियनशिप अभी बाकी है और भारत की उम्मीदें भी। विश्व चैंपियनशिप के चौथे दिन महिला युगल में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद का शानदार अभियान क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गया। त्रिशा गायत्री ने प्री क्वार्टर में आज जापान की रेन इवांगा और काई नाका निशी की जोड़ी को 21-16, 21-12 से हराया। पहले गेम में भारतीय जोड़ी ने 21-16 से जीत हासिल की। दमदार स्मैश और बेहतरीन क्रॉस कोर्ट रिटर्न से दबदबा बनाए रखा। जापानी जोड़ी दूसरे गेम में बिल्कुल रिदम में नहीं दिखी, ज्यादातर शॉट गैलरी और बैक लाइन के बाहर गिरी। हालांकि त्रिशा गायत्री ने नेट पर कई अंक गंवाए भी। गायत्री ने माना मुकाबला काफी कड़ा था, शुरुआत में शॉट सही नहीं पड़ रहे थे।
1: इनिशियली वाज अ प्रीटी नेक टू नेक, बट देन आई थिंक वी लुक्ड टू आवर कोचेस एंड दे गिव अस सम टिप्स, सो आई थिंक वी वर अटैकिंग अ लॉट मोर इन द सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट गेम एंड द सेकंड सेट। या इट वर्क्ड इन आवर फेवर। 2-3 पॉइंट के बाद समझ आया कैसे खेलना है।
0: पहले गेम के बाद दूसरा गेम भारतीय जोड़ी के लिए आसान रहा। त्रिशा ने कहा कोच के गुरुमंत्र बेहद काम आए।
1: दे गिव अस अ फ्यू टिप्स दैट वर रियली हेल्पफुल मेंटली एंड फिजिकली, वी इंप्लीमेंटेड इट। ही जस्ट टोल्ड अस टू स्टे काम, focus on attack, and we just want to take it more focused and everything. We came here with a goal and we are focusing on that.
0: आपसी तालमेल के बारे में त्रिशा ने कहा कि अपनी कमजोरी और ताकत को बेहतर जानते हैं।
1: The rotation and the attacking, it's one of our strength. While playing also, it's really working. When we are leading also, like a little bit calm, because at this level, we need to be really calm and just be in that moment. Every point is matters.
0: महिला एकल में भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु का सफर प्री क्वार्टर में चीन की

0: वेंग जी के सामने थम जरूर गया, लेकिन रैंकिंग में अपने से बेहतर और उम्र में अपने से 5 साल युवा चीनी खिलाड़ी के खिलाफ सिंधु ने दिखा दिया कि 31 साल की उम्र में भी उनमें पुराना जोश और दमखम अभी बाकी है। सिंधु को 3 गेमों के कड़े मुकाबले में 21-11, 15-21, 21-17 से हार का सामना करना पड़ा। पहले गेम की शुरुआत में सिंधु पिछड़ रही थी, लेकिन रफ्तार उन्होंने रफ्तार पकड़ ली और स्कोर 7-7 कर दिया। लेकिन चीनी खिलाड़ी के तर्कश में विविधता भरे शॉट थे। पहला गेम वेंग जी ने 21-11 से जीत लिया। घरेलू दर्शकों के समर्थन ने सिंधु में नई ऊर्जा भर दी। दूसरे गेम में सिंधु का प्रभाव पूरे उफान पर था। उन्होंने 3-0 की बढ़त ली और फिर उसे 7-2 कर दिया। हालांकि वेंग ने वापसी की और स्कोर 15-15 की बराबरी पर ले आई, लेकिन सिंधु उस मिट्टी की नहीं बनी जो आसानी से हार मान ले। दूसरा गेम 21-15 से जीतकर उन्होंने मैच में वापसी की। निर्णायक गेम में कांटे की टक्कर हुई। 5 बार तो स्कोर बराबरी पर आ टंगा। पहले 9-9, फिर 13-13, फिर 15-15, 16-16 और 17-17। कोई हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ऐसे में वेंग की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। लेकिन मेडिकल ब्रेक के बाद वे फिर कोर्ट पर उतरी, लेकिन जल्द ही फिर इंजरी की शिकायत की, पर दर्द के बावजूद डटे रहने का फैसला किया और अंतिम 2 अंक लेने के बाद जीत हासिल कर कोर्ट पर लेट गईं। सिंधु ने माना मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन उन्हें और संयम की जरूरत थी।
1: थोड़ा और पेशेंस रहना था मेरे साइड से। बहुत अच्छा चल रहा था गेम 1, गेम 2 और गेम 3 भी बहुत इक्वल चल रहा था। इन द ओवरऑल गेम लाइक स्पेशली इन द एंड, बिकॉज आई कांट सी एनी लूप होल्स इन बिटवीन द पॉइंट्स, द लास्ट 3 पॉइंट्स जस्ट चेंज द गेम इज व्हाट आई फेल्ट। आई शुड हैव बीन लिटिल पेशेंट, दैट्स व्हाट आई कैन सी फ्रॉम टुडेस गेम। एंड व्हेन यू लूज यू नीड टू डील विद इट एंड बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर फ्रॉम योर मिस्टेक्स।
0: पुरुष युगल में सात्विक रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को प्री क्वार्टर में उतरने का मौका मिल ही गया। पहले दौर में उन्हें बाई मिला था और दूसरे दौर में स्कॉटलैंड की जोड़ी चोट के कारण हट गई थी। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीत चुके सात्विक चिराग ने मलेशिया के जुनेदी आरिफ और येप रॉय किंग को 3 गेम के मुकाबले में 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। रोमांच के शिखर तक पहुंचे मुकाबले के बाद दर्शकों का जोश पूरे आईजी स्टेडियम में गूंज उठा। सात्विक चिराग ने रोमांचक जीत के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा,
2: जब ही हम कोर्ट पे जाने वाले थे पक्का सोचा था कि ऐसा होने वाला है, टफ होगा, इट वोंट बी इजी, थोड़ा कोर्ट कंडीशंस भी डिफरेंट रहेगा। वी वर रेडी फॉर इट, वी वांट प्लेइंग एट आवर बेस्ट, वी हैव टू प्ले द राइट काइंड ऑफ गेम, बिकॉज़ इफ यू कीप इट सिंपल इनसाइड द कोर्ट पॉइंट्स आएंगे। वी न्यू like we weren't playing at our best, but there have been situations in the past where we've not played at our best, but we've got back and I think we just try to tell each other that eventually things will turn into your favor, just keep it simple, keep it inside the court and don't really complicate things.
0: भारतीय खिलाड़ियों के अन्य मुकाबलों की बात करें तो युवा शटलर आयुष शेट्टी का स्वप्निल सफर प्री क्वार्टर में इंडोनेशिया के 11वीं वरीयता प्राप्त अल्वी फरान के सामने 21-19, 21-11 से थम गया। आयुष ने शुरुआत में 3 अंक बटोरकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद फरहान ने वापसी की और स्कोर 7-7 पर ले आए। दोनों खिलाड़ियों के बीच 1-1 अंक बटोरने को लेकर कड़ी जद्दोजहद चली। मैच पेंडुलम की तरह कभी आयुष और कभी फरहान के पाले में झूलता नजर आ रहा था। अंत में इंडोनेशियाई खिलाड़ी ने पहला गेम 21-19 से जीत लिया। दूसरे गेम में आयुष फरहान के बीच फिर कड़ी टक्कर हुई, लेकिन फरहान ने अंततः 21-11 के साथ दूसरा गेम और मैच अपने नाम कर लिया। आयुष ने माना कि पहले गेम में मौके थे, लेकिन वह इसे भुना नहीं पाए।
3: He was playing really sharp today. I had my chances in the first game, couldn't convert it. And I think second game he was playing with more confidence and he was putting a lot of pressure from the net. I think that made the difference. Definitely he was not giving much chance, but I think when I had my chances, I was not really sharp getting the lines. That made a lot of difference, I would say. He played much better badminton and he was a better man.
0: आयुष के खिलाफ जीत हासिल करने वाले फरहान ने कहा,
4: I know Ayush have a lot of pressure because he playing at home, so right. That's why I mean I took that for my motivation and I'm just gonna be like when I was leading I'm just gonna be present and just think that only one by one. So I think that's the main point.
0: कहते हैं खेल में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या सीखता है। विश्व चैंपियनशिप के मंच पर आयुष शेट्टी की तीसरे दौर में हार के साथ चुनौती जरूर टूट गई, लेकिन अपने पहले ही मुकाबले में दुनिया के नंबर 1 शी युकी को हराने वाले भारत के इस युवा खिलाड़ी ने साबित कर दिया प्रतिद्वंदियों को उन्हें हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा की जोड़ी को चीन की दुनिया की छठे नंबर की जोड़ी गुआ चीन वा और चैन फेंग ने 21-16 21-5 से हरा दिया। इस जोड़ी ने माना कि वे चीनी जोड़ी की तेजी का सही ढंग से सामना नहीं कर पाए।
5: हमारे हाथ में बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं था, उन्होंने पूरा मैच काफी अच्छे से कंट्रोल किया था। यही कहना चाहूंगी हमारे साइड से बहुत गलतियां हुई है, उनको काफी इजी पॉइंट्स मिल गए थे।

0: हमने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स किया, उसकी वजह से मैच ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत इजीली मैच जीते हैं।
1: तनिषा ने कहा कि वे अपनी गलतियों पर काम करेंगे और मजबूत वापसी करेंगे।
0: इट्स सर्टेनली वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, बट आई थिंक आई जस्ट लाइक टू टेल माय सेल्फ एंड ध्रुव दैट दिस इज नॉट द लास्ट मैच एंड दैट वी हैव सो मेनी मोर मैचेस टू गो। इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट्स डिसअपॉइंटिंग, बट वी हैव मच बिगर इवेंट्स कमिंग अप। द ओनली थिंग आई कैन टेक बैक फ्रॉम दिस मैच इज अ लॉट ऑफ लर्निंग। वी गॉट टू गो बैक, वॉच आवर मैचेस, learn a lot from it and prepare better, come back better and I'm sure there'll be a win in our bag very soon.
1: भारत के अलावा अन्य मुकाबलों की बात करें तो महिला एकल में दुनिया की नंबर एक दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने डेनमार्क की मिया बिलिच फेल्टेट को 21-16, 21-10 से हराया। पुरुष एकल में 2021 के विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन यू को कनाडा के विक्टर लाई ने 22-20, 21-18 से पराजित कर दिया। पिछली विश्व चैंपियनशिप में विक्टर ने लो किन को हराकर ही कांस्य पदक जीता था। पुरुष युगल में दुनिया की नंबर एक और पिछली चैंपियन जोड़ी दक्षिण कोरिया के किम हॉन हो और सो सुयुंग जो ने इंग्लैंड के बेन लेन और सीएन वेंडी को 21-13, 21-16 से पराजित कर दिया। महिला एकल में पूर्व चैंपियन जापान की नोजोमी ओकुहारा ने भारतीय मूल की अमेरिकी खिलाड़ी इशिका जायसवाल को 21-11, 13-21, 21-12 से हरा दिया। इसके अलावा चौथे दिन डेनमार्क के रास्मस गेमके ने तीसरी वरीयता के जोनाथन क्रिस्टी को 11-21, 21-13, 21-18 से हराकर उलटफेर कर दिया। अब पांचवे दिन सात्विक चिराग का सामना क्वार्टर फाइनल में चीन के लियांग वेई कैंग और वांग चेंग से होगा, जबकि त्रिशा और गायत्री की भारतीय जोड़ी चीन की जिया यीफेन और झांगशू जियांस के साथ खेलेगी। महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एन शे यंग के सामने चीन की हान यूई होंगी और पुरुष एकल में एंडरसन का सामना जापान के कोदाई नाराओका से होगा। भारत की पदक की उम्मीदें अब युगल मुकाबलों पर हैं। देखते हैं अपनी मेजबानी में पदक के लिए जुगलबंदी कितनी कारगर रहती है। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ मैं नवीन कुमार शर्मा।

जुगनू की बारा। सबके होठों में ठहरी थी आके कोई बात, ढोल मंजीरे बजने लगे, बड़ी डफली पर था और

दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। जी हाँ, आपकी दोस्त भी कमाल है। बिल्कुल, मैं करके गई थी वादा कि आऊँगी किस तारीख को, और लीजिए हाजिर हूँ स्टूडियो में। अब निभाना होगा आपको वादा, क्योंकि आपको भी मेरे साथ जुड़ना होगा नॉन स्टॉप गपशप पर। तो आई एम श्योर कि आप आ चुके हैं सभी अपने अपने मोबाइल पर या फिर रेडियो पर, आपने ऑन कर लिया है 107 FM रेनबो नॉन स्टॉप गपशप। हम रहेंगे पूरे एक घंटा आपके साथ, बहुत तरह की बातें करने के लिए।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर। आज के दिन
1: जी हाँ दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और कार्यक्रम में आपकी दोस्त सविता आ चुकी है लेकर के आज के दिन की घटनाएं। जी हाँ, गौरवपूर्ण गाथाओं के जो खजाने हैं शायद संसार के हर देश के इतिहास में छुपे हैं, उन्हीं कहानियों से गुजरती नस्लें लिख देती हैं एक और इतिहास और बन जाते हैं वही ऐतिहासिक तथ्य। और इन्हीं तथ्यों का ताना बाना समेटे हुए हम चले आए हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में, जिन्होंने दुनिया को विभिन्न तरीकों से आकार दिया है। दोस्तों 1192 में इसी दिन मिनमोटो योरितोमो को सेई ताई शोगुन नियुक्त किया गया था, जो जापान में शोगुनेट प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक था। 1680 में प्यूब्लो विद्रोह के दौरान प्यूब्लो इंडियंस ने स्पेनियों से सांत्रा फे पर कब्जा कर लिया था, जिससे उल्लेखनीय घटनाएं हुई थी। और 1831 में नेट टर्नर के दास विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जो अमेरिकी दास प्रथा उन्मूलन आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके अलावा 21 अगस्त 1911 को लूब्र संग्रहालय से मोना लिसा की कुख्यात जो चोरी हुई थी पेंटिंग को वैश्विक पहचान दिलाने में योगदान दिया था। यह तारीख 1858 में लिंकन डगलस बहसों की शुरुआत का भी प्रतीक है, जिसका अमेरिकी राजनीति और दास प्रथा से जुड़े मुद्दों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हमने की साझा आपके साथ। दोस्तों आज के दिन खास व्यक्तियों ने भी जन्म लिया, जिनमें आज के दिन यानी 21 अगस्त 1910 में प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे। उन्हें पहली बार सार्वजनिक पहचान 1934 में मिली, जब उन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का रजत पदक प्रदान किया गया। 1941 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। पर्यटन में रुचि होने के कारण उन्होंने अनेक यात्राएं की और इन यात्रा दृश्यों को अपनी कलाकृतियों में विभिन्न शैलियों में उन्होंने ढाला। उनका संपूर्ण कलात्मक जीवन ऐसे अनुभवों से परिपूर्ण रहा। 21 अगस्त को हुआ था उनका जन्म। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐतिहासिक तथ्य जो हमने किए आपके साथ साझा। बातें और भी करेंगे लेकिन फिलहाल सुनेंगे

ये गुस्ताख दिल तेरे लिए, जी हाँ बिल्कुल, मेरा जो गुस्ताख दिल है बिल्कुल आपके लिए धड़कता है, बेताब है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम सुन भी रहे हैं या नहीं। लेकिन मुझे पता है कि आप ज़रूर अपने फ़ोन सेट से लगे हुए हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये भी सुनने के लिए बेताब होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं विषय बताने वाली हूँ बिल्कुल, ताकि आप जल्दी जल्दी से फ़ोन लाइन्स पर आकर के अपनी बात मेरे साथ साझा करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जी हाँ, आज है हमारी प्यारी सी एक एक्ट्रेस जिनकी फिल्म बहुत हिट रही, उनका जन्मदिन। जी हाँ, उनका जन्म का नाम है रचना। कुछ पता चला आपको? नहीं पता चला ना। लेकिन अब जो दूसरा नाम

बताऊंगी, उससे आप पहचान लेंगे कि मैं किस एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ। जी हाँ, उनकी फिल्म का नाम भी आप पहचान जाएंगे। जी हाँ, भूमिका चावला। जी हाँ, उनका है आज जन्मदिन और उन्हें प्यार से रचना गुड़िया भी कहा जाता है। एक भारतीय अभिनेत्री हैं, मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करती हैं। तेलुगु सिनेमा के सफल कैरियर बनाने के बाद उन्होंने भूमिका ने किस फिल्म में काम किया था? जी हाँ, सलमान खान की फिल्म तेरे नाम में। जी हाँ, भूल गए क्या? बिल्कुल नहीं भूले होंगे, वो फिल्म भला कोई कैसे भूल सकता है। इतनी खूबसूरत फिल्म थी और उसका जो ट्रेजिक मोड़ था वो भी बहुत खूबसूरत था और काफ़ी मार्मिक था। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था फिल्म तेरे नाम ने। तेरे नाम के बाद भूमिका ने रन, दिल ने जिसे अपना कहा, सिलसिला जैसी कई फिल्मों में काम किया। तो दोस्तों, आज है भूमिका चावला का जन्मदिन, तो उनकी फिल्म तेरे नाम का गाना सुनना तो बनता है। लेकिन उस गाने को सुनवाने से पहले वादा किया था बताऊंगी कि आज का विषय क्या होगा। तो दोस्तों, आज का विषय है बचपन से लेके आज तक। दोस्तों, कोई तो एक इंसान हमारी ज़िंदगी के इतने करीब होता है कि कुछ भी अच्छा, जी हाँ, हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि हर समय ख़राब होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है, बस हम भूल जाते हैं। या फिर कहते हैं ना कि अच्छा वक्त तो पंख लगा के उड़ जाता है, और जो दुख के दिन होते हैं वो तो ऐसा लगता है कि दुख के दिन कटे ना रह भाई भैया, कुछ ऐसा वाला गाना याद आ जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे लम्हे आते हैं, ऐसे क्षण आते हैं कि जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आते हैं। चाहे वो हमारी परीक्षा में पास करने का दिन हो, चाहे वो हमारी टीचर के द्वारा हमारी प्रशंसा करने का वक्त हो, या फिर कोई हमें किसी कंपटीशन में उपहार मिलने का, बड़े कंपटीशन में उपहार मिलने का वक्त हो, या फिर जब बड़े हो जाते हैं तो नौकरी मिल गई हो उसकी खबर सुनाना हो, या फिर किसी लड़की से मोहब्बत हो गई हो वो भी किसी को बताना हो, जताना हो, और या फिर ज़िंदगी में कोई ऐसा बेहतरीन काम आपने किया है जिसकी खबर आप सबसे पहले उसी शख्स को सुनाना चाहते हैं जो आपके दिल के सबसे करीब है। तो वो कौन है? वो व्यक्ति कौन है जिसे आप अपने दिल की बात सबसे पहले बताना चाहते हैं? और काफ़ी कई बार तो ऐसा होता है कि काफ़ी देर तक हम उसको अपने दिल में रख नहीं पाते, लेकिन फिर भी रखते हैं कि नहीं, हम तो उन्हीं को सबसे पहले बताएंगे। वो इंसान आपकी ज़िंदगी का कोई भी इंसान हो सकता है। तो बस इतनी सी बात हमें आपको बतानी है आकर के। मैं एक गाना प्ले कर रही हूँ, वक्त आपको मिल जाएगा सोचने का। इसमें सोचने का कुछ भी नहीं, बस आ जाइएगा मेरे साथ 2213134 1 पर।

0: जी हाँ दोस्तों, हमारी प्यारी एक्ट्रेस भूमिका चावला को जन्मदिन की देते हैं हार्दिक बधाई हमारी ओर से, और बढ़ते हैं आगे के सेगमेंट कोलकाता कल्चर की ओर।
1: कोलकाता कल्चर।
0: कोलकाता में होने वाली सांस्कृतिक और कुछ साहित्यिक गतिविधियों के भीतर हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल कोलकाता फूड टैग 2026 होटल और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी यह प्रदर्शनी 21 से 23 अगस्त 2026 तक विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा प्री फेस्टिवल लाइफस्टाइल प्रदर्शनी होने वाली है दोस्तों। त्योहारी सीजन की शुरुआत से जुड़ी फैशन और हस्तशिल्प प्रदर्शनियाँ 21 अगस्त से एक्रो

0: पॉलिस मॉल और त्यागराज हॉल जैसे स्थानों पर शुरू होंगी। और हम ज़्यादा वेट ना करवाते हुए हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, तो वो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो।
1: हेलो, सुप्रभात।
0: सुप्रभात जी, आपका नाम बताइए।
1: शुभजीत बिलकुरिया से।
0: शुभजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए आप हैं कैसे।
1: मैं अभी फिलहाल ठीक हूँ, अच्छा हूँ।
0: और करते क्या है आप नौकरी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: किस में नौकरी तो करते हैं।
1: प्राइवेट में हूँ, आईटी में हूँ।
0: आईटी में है जी। आपका ऑफिस कहाँ है।
1: सॉल्ट लेक
0: में। तो फिलहाल आप घर में है या ऑफिस में।
1: अभी एक्चुअली हम लोग का हाइब्रिड चलता है, तो वर्क फ्रॉम होम हाफ होता है और हाफ तो ऑफिस जाके, तो थ्री डेज करके ऐसा होता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: थ्री डेज टू डेज एक्चुअली, सैटरडे संडे छुट्टी।
0: ओके, तब तो अच्छी बात है और हमारा प्रोग्राम सुनने का मौका मिल जाता है।
1: और वैसे भी जब ऑफिस जाते भी हैं तो क्योंकि हम लोग का ऐसे पूरा मतलब आईटी में ऐसा है कि 24 घंटा ही आपको रहना पड़ता है, मतलब यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो क्योंकि क्लाइंट बाहर का है तो उन लोग के टाइम के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है
0: जी।
1: तो इसलिए मैं बाद में भी जा सकता हूँ, जैसे 11:30-12 बजे के बाद ही जाता हूँ, तो ये सुन के जाता हूँ। हमेशा रहता है रेनबो गोल्ड, दोनों ही हमेशा रहता है
0: जी। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। आप लोग सुनते हैं तभी हमको प्रोग्राम करने में मजा भी आता है।
1: और आकाशवाणी का आर्काइव ऐसा है कि मतलब जो भी गाना, मतलब स्पेशली जो पुराने गाने हैं जो बजते ही नहीं है अभी रेडियो पे,
0: ये
1: आकाशवाणी ही एक जगह है जहाँ पर सुन सकते हो। क्योंकि मैं थोड़ा पुराने जमाने के गाने का पसंद, मतलब मुझे पसंद है।
0: 70s, 80s, 90s,
1: याद ही नहीं रहता है, मतलब बहुत कम। बहुत अच्छा गाना कुछ हो तो वो याद रहता है, लिरिक्स वगैरह कुछ याद नहीं रहता।
0: जी जी जी, तो आप हमारे विषय से संबंधित कुछ बोलना चाहेंगे।
1: जी, एक्चुअली मुझे लगता है कि जिंदगी में हर इंसान का एक क्षण होता है जहाँ पर आप मजबूर हो जाते हैं सोचने में कि जिसे आप अपना समझते थे वो एक्चुअली अपना है नहीं, और जिसे आप समझते थे कि चलो ठीक है वही आपका अपना हो जाता है। और एक एक हर इंसान एक टाइम पे रियलाइज भी करता है कि जब आपका खराब समय आता है, क्योंकि खुशी के समय आप अपने आसपास काफी सारे लोग देख पाएंगे, स्पेशली रिलेटिव्स। मतलब मैं अपना पर्सनल बता सकता हूँ कि रिलेटिव्स वगैरह जो हम सोचते थे कि ये तो अपने हैं, लेकिन आपका जब खराब समय आता है तो आपको तब रियलाइज होता है कि वो तो है ही नहीं, कहाँ गायब हो गए
0: जी।
1: और इसी टाइम पे मतलब जो मेरे जिंदगी में, जैसे कि मैं एहसास किया कि मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त, स्कूल का टाइम का, उसका नाम सौरभ है। तो मेरा हाल ही में एक बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ, तो मतलब लाइफ एंड डेथ वाला ऑपरेशन। तो जो फैमिली, इंटर इमीडिएट जो फैमिली है वो तो हमेशा आपके साथ है, लेकिन मैं जिसे सोचता था कि वो रहेंगे हमारे साथ, वो कहीं था नहीं, और वही अकेला मेरा दोस्त था जो मेरे साथ था 24 घंटा। मतलब हॉस्पिटल का जितना भी, मतलब उस टाइम पे ना, जब आप एकदम सोचते हैं कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, मतलब आप मजबूर हैं और बहुत अकेला महसूस करते हैं, तब जाके मेरा वो दोस्त हमेशा, मतलब बैड टाइम्स में जो आपका साथ है वही आपका सच्चा दोस्त, वही आपका सच्चा साथी। और वही मैं एहसास, और मैं इसलिए क्योंकि मैं बचपन से हम लोग एक साथ हैं और घर भी नजदीक है, तो मेरा जितने भी सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, हैप्पी टाइम, सैड टाइम, सब कुछ मैं शेयर करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि जैसे लोग बदल जाते हैं ना समय के साथ साथ, तो अभी तक वो बदला नहीं, तो इसीलिए भरोसा भी वैसा ही है। तो चाइल्डहुड फ्रेंड है ना,
0: बिल्कुल, तो आप लकी हैं कि ऐसे दोस्त मिले आपको।
1: हाँ, क्योंकि अब के जमाने में कौन क्या है बोले मैम, कि आप देखते भी हैं प्रैक्टिकली, ये छुपाने की भी चीज है नहीं, क्योंकि सबके साथ ही ऐसा होता है कभी कभी, मतलब एक टाइम पे तो होता ही है। और आपको अगर मालूम करना है कि ये आदमी या कोई भी, मतलब ये आपका सच्चा दोस्त है कि नहीं, ये आप तभी आप एहसास कर सकते हैं जब आपका खराब समय आएगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि लाइफ तो अप एंड डाउन है, अप जब है तो डाउन तो आएगा ही एक टाइम।
0: बिल्कुल,
1: तभी आप रियलाइज कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो शुभजीत आपने अपने मन की बात हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: शुक्रिया आपका,
0: शुक्रिया
1: मेरा मेरे इतने बात सुनने के लिए पेशेंटली।

0: नहीं कोई नहीं, तो
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक
1: और मुझे बहुत खुशी लगता है जब आप आती हैं और प्रोग्राम करती हैं, इतनी सादगी से प्रोग्राम करती हैं तो, और गाना भी इतना अच्छा बजाते हैं।
0: थैंक यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू। तो दोस्तों, शुभजीत ने अपने दिल की बात कही और ये बात सही है, और जब कोई आपके पास होता है तो लगता है ना कि जैसे एक अंधेरा होता है ना जब चारों तरफ, और एक मोमबत्ती आप जला दें तो वो सारे में रोशनी कर देती है। तो ऐसा ही होता है कि बुरे वक्त में जब आप होते हैं और आपके पास कोई आता है तो आप समझ लीजिए कि आप एक मोमबत्ती के जैसे हैं जो उसकी ज़िंदगी में रोशनी करने वाले हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और भी, और अपने मन की बात कह सकते हैं। फिलहाल मैं सुनवाऊंगी आपको एक गीत।

0: सहर के साथ चले, रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र किसी अजनबी के साथ चले। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जुड़ चुके हैं हमारे दोस्त, तो देखें कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ हेलो, आप कौन बोल रहे हैं?
1: दीदी पायल,
0: मिस्टी सी आवाज वाली पायल, तुम्हारा स्वागत है कार्यक्रम में। बोलो कैसी हो?
1: हाँ
0: हम एकदम बढ़िया है, और तुम लोगों के साथ बात करते हैं तो और भी बढ़िया हो जाते हैं। बोलो विषय सुना है? विषय है कि तुम्हारी जिंदगी में यदि कोई सबसे अच्छा, कोई खुशी की बात होती है या फिर कोई अपने दिल की बात होती है, गम की बात होती है, तो वो कौन सा शख्स है जिसे तुम बताना चाहती हो?
1: ओके दीदी, एक तो खानी बांग्लाई बोला जावे।
0: अच्छा बोलो।
1: मैंने तुम्हें एक तो खानी बोलते पारबे बांग्ला, सुविधा हो तो ताले।
0: हम यदि बांग्ला बोलेंगे तो मेरे सारे जो जितने कॉलर्स है ना, सब हंसेंगे। हाँ। सब हंसेंगे मेरी बंगला सुनकर। तो मतलब वो कौन कौन आदमी है जिसकी जार कथा, मतलब तुम्हें सब थे के आगे ताकि कथा बोलते जाओ, जेटा भालो कथा होले, खराब कथा होले, किचुई ए रकम कथा होले, शेटा के मानुष आछे जाके तुम्हें वही कथा बोलते जाओ।
1: मैं सबर आगे बोलते चाहिए तो
0: है है
1: एकदम। তো দিদি এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়লো, মানে যেটা বলবো ফার্স্ট প্রসঙ্গে, সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের প্রবীণদের একটা দিবস রয়েছে, মানে যারা বয়স্ক মানুষ রয়েছেন। তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে বয়স্ক বা প্রবীণদের যেটা মেন সমস্যা হয় যে এদের ক্ষেত্রে এদের কথা বলার মানে মানুষের খুব অভাব থাকে। মানে তোমার এই কথা প্রসঙ্গে আমার মনে পড়লো যে তারা যে একটা মনের কথা শেয়ার করবে, সেই কথা বলার মানে মানুষটা তাদের কাছে থাকে না, বা তাদের কথা অনেকেই আছে শুনতে চায় না বা গুরুত্ব দিয়ে সেরকম শোনে না। তো আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রে সেই প্রবীণদের পাশে দাঁড়ানো আগে আমাদের দরকার, অন্তত তাদের পাশে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত যে তোমাদের মনে কি কথা রয়েছে বা কি তোমরা বলতে চাও, তাদের যে সুবিধা অসুবিধা এই কথাগুলো, তাদের সুখ দুঃখের কথাগুলো আমার মনে হয় তাদের কাছ থেকে আমাদের আগে জানাটা খুব দরকার, এতে তাদের মনটাও ঠিকঠাক বা ভালো থাকবে এটা মনে হয়। তো আমার মনে হয় আমি কথা বললে আগে তাদের সাথেই বলে আগে তাদের মনটাকে ঠিক রাখবে।
0: ওকে, तो तुम सबसे पहले चाहती हो कि वो जो एजेड लोग हैं उनके पास जाके हमें बात करनी चाहिए?
1: एकदम
0: एकदम। ठीक है पायल, वेरी गुड, और मिली तुम आई हमारे साथ प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो दोस्तों, पायल ने कहा कि हमें एजेड लोगों के पास जाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि सुनने के लिए लोगों के पास नहीं। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ रहे हैं तो हम उन्हें डायरेक्ट ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? उन्होंने हमारी बात तो हमें लगा तो है लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों हम उनका कॉल ड्रॉप करते हैं और बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और आपको सुनवाएंगे एक गीत। जी हाँ, गीत हम सुनवाने जा रहे हैं टूटे हैं सपने, मोहम्मद इरफान की आवाज़ में, लेकिन पहले एक और कॉलर का ट्राई कर लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो,
0: हाँ कौन बोल रही है?
3: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी, आप कौन बोल रहे हैं?
3: हेलो,
0: हाँ आप अपनी मैं आपकी आवाज़ सुन पा रही हूँ, आप बोल सकते हैं।
3: सविता जी गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, आप कौन बोल रहे हैं?
3: किशोर बोल रहे हैं, बाली हावड़ा से।
0: किशोर जी, किशोर जी बहुत दिनों

0: एफएम के दीवाने हैं, नई हाटी के सरकार
1: जी,
0: तो वो बहुत याद आते हैं और बहुत साथी हैं मेरे, बहुत साथी हैं पुराने जो मुझे याद आते हैं। मैं क्या करूं, मेरे पास कोई फोन नंबर भी नहीं है कि मैं उनसे बात करूं।
1: जी हम हैं ना आपके साथ जुड़े हुए बीच में।
0: अरे एक यही तो जरिया है कविता जी, जो आपसे ही बात करने पर आप सबसे मिलवाते हैं
1: जी।
0: मेरी आवाज भी वो सुन रहे हैं, आपके जरिए एक जरिया है
1: जी बिल्कुल। तो हम तो आप अपने तो मन की
0: अच्छा लगा आपसे बात कर
1: जी, बहुत शुक्रिया आपका,
0: अभी से आपने मिलवाया, आपने मिलवाया, आपका धन्यवाद,
1: थैंक यू श्याम, नमस्कार। तो श्याम सुंदर जी जुड़े हमारे साथ और हमारी कोशिश यही रहती है, क्योंकि 10:50 हो चुके हैं और लगातार हमारे पास लोग आ रहे हैं। देखें हम लेना चाहते हैं फोन। हेलो
2: फोन, हेलो
1: हेलो, हाँ कौन बोल रहे हैं?
3: मैं अरूप बोल रहा हूँ।
1: अरूप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं आप?
3: मैं कहना चाहता हूँ
1: जी,
3: हम तो ओल्ड एज हो गया 64। अच्छा हमारा जो पुराना कॉलर है ना, एक कॉलर है बहुत माने अच्छा कॉलर थे, वो है रतन कर्म का, उसका उनका उनका देहांत हो गया एक बरस पहले। हेलो,
1: हाँ हाँ मैं सुन पा रही हूँ आपकी बात।
3: ये बोलना चाहता हूँ, पुराना माने ज्यादातर कॉलर माने अभी आता नहीं है
1: जी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके जो पुराने कॉलर्स हैं वो भी आए और जुड़े और आप लोगों से हमारे जरिए बात कर पाए और आप उनकी आवाज़ सुन पाए। अरूप जी आप भी आते हैं तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपसे हैं बिल्कुल। तो आप जी धन्यवाद। तो दोस्तों अब फिलहाल हम एक गीत सुनवाएंगे, टूटे हैं सपने। कुछ हमारे दोस्त हैं जो थोड़े से उदास हैं, निराश हैं, उनकी अपने जो पुराने दोस्त हैं उनकी आवाज़ें नहीं सुन पा रहे, तो हम तो बस उनसे इतनी ही इल्तिजा करेंगे कि वक्त मिले तो ज़रूर आइएगा, जुड़िएगा और आपके दोस्त आपको याद करते हैं।

0: दोस्तों वक्त बहुत कम रह गया है और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मैं उनको अंत में एक बार लेना चाहूंगी। हेलो
1: दीदी भाई। हेलो।
0: हाँ आप अपना नाम बताइए।
1: हम नहीं दीदी भाई, हम तो आप तो होल्ड करके बोला जे मेरे

0: रखने के लिए मैं होल्ड करके रखा हूँ प्रवीर कुमार मंडल मुझसे पूर्व वर्धमान
1: जी। प्रवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है तो मैं उस पर आपको बहुत सारी बधाई देती हूँ।
0: हाँ लेकिन हम तो जुड़े हुए हैं आर्मी कैंप का साथ, हमारा पानागढ़ में आर्मी कैंप है।
1: अच्छा।
0: और सब आर्मी कैंप में हम जब जाते हैं हम लोग को इतना वो लोग प्यार करता है एवं मैंने बधाई देता है ये इतना उम्र वाला आदमी अभी भी काम कर रहा है ये, इसके लिए मैं बोला मेरा उम्र 18 साल है अभी तक दी भाई तो आप... ये हम उम्र में 61 साल होने वाला हूँ लेकिन मैंने इसमें मैंने 18 साल मैंने मन में 18 साल है
1: जी मेरा। जी जी आपका उम्र 61 साल है लेकिन आप अपने आप को 18 साल का महसूस करते हैं तो आपकी आवाज से मैं भी आपको महसूस कर रही हूँ कि आप भी 18 साल के ही हैं तो आप एकदम मस्त रहिए चुस्त रहिए दुरुस्त रहिए।
0: शुभकामना है आप अच्छा रहिए दीदी भाई।
1: अरे सुनिए प्रवीर जी सुनिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके साथ जितने भी और जो दोस्त हैं ना आपके जितने भी उम्र दराज लोग हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं दीजिए और उनको कहिए कि वो एकदम मस्त रहे चुस्त रहे काम में लगे रहे और मुस्कुराते रहे एकदम हंसते रहे।
0: ठीक दीदी भाई आपका बधाई हो दीदी भाई
1: जी,
0: नमस्कार।
1: दोस्तों मेरी जिंदगी में मैं सोचती हूँ कि इतने अच्छे लोग मिलते हैं और ये जो प्रवीर जी जुड़े हैं 61 साल के हैं और वरिष्ठ नागरिक के वो एक ग्रुप में रहते हैं और कहते हैं कि इतने सारे लोग हैं उसमें जुड़े हुए और सब काम करते हैं और सब हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो हमें भी उनकी ज़िंदगी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए फ़िलहाल मुझे आपसे लेनी होगी विदा और मैं यही कहूँगी कि मैं कोई गया वक्त नहीं जो लौट के फिर ना आ सकूँ क्योंकि मैं लौट के आने वाली हूँ 30 तारीख को। जी हाँ 30 तारीख को फिर से आपके साथ मिलूँगी तो आप सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए हंसते रहिए 11:10 पर FM गोल्ड यानी खरा सोना पर मिलते रहिएगा।

जी हाँ दोस्तों, जो पुण्य करता है वो देवता बन जाता है और जो पाप करता है वो पशु बन जाता है, लेकिन जो प्रेम करता है वो आदमी बन जाता है। ये बात तो सोले आना सच है। वैसे आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर रिंकू के साथ तीन का तड़का कार्यक्रम, और कार्यक्रम पे हम तड़कों के साथ लाए हैं गीतों का वो सफर जिसके लिए आप बेकरार बैठे हुए हैं। जी हाँ, सूरज की ठंडी ठंडी जो हमारी रोशनी है वो अब पड़ रही है, क्योंकि जो कड़कड़ाती धूप थी वो तो सुबह निकल गई। आइए अब धीमी धीमी धूप पे प्यार भरा तड़का लगाते हुए सुनते हैं सबसे पहले राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये गीत। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म कलयुग से। गीत के बोल लिखे थे सैयद कादरी ने और संगीत से सजाया था रोहेल हयात एंड फैजल रफी ने। वैसे दोस्तों, जिया धड़क धड़क राहत फतेह अली खां की सबसे ज़्यादा हिट हुई थी ये गीत, और कहते हैं कि हमारे 107 एफएम रेनबो में ऐसे हिट गीतों की ही भरमार लगी हुई है। कहते हैं, दुश्मनों से ना सगे भाई से घबराते हैं, दुश्मनों से न सगे भाई से घबराते हैं, जो बुरे लोग हैं वो सच्चाई से घबराते हैं। दोस्तों, दिल के ढलते ही तेरी याद चली आती है, इसलिए शाम की तहनाई से हम घबराते हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं अगला गीत सोनू निगम की आवाज़ में।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में फिल्म लकी से। ये गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत से सजाया था अदनान सामी ने। वैसे दोस्तों, कोई दिखा के रोए तो कोई छुपा के रोए, जी हाँ, हमें रुलाने वाले हमें रुला के रोए। मरने का मजा तो तब है गालिब जब कातिल भी जनाजे पर आकर रोए। वैसे दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में 3:16 हो चुके हैं 17 सेकेंड के साथ। अब सुन रहे हैं रिंकू के साथ 107 FM रेनबो पर कार्यक्रम 3 का तड़का।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का। 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर 3 का तड़का। 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर
0: जी हाँ दोस्तों, 107 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का। लेकिन अभी वक्त है, सुनते हैं परियोजना प्रस्तुति।
2: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के विषय में। जी हां, भारत सरकार की एक अत्यंत किफायती टर्म इंश्योरेंस योजना है ये। इसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और कम आय वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर उसका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सके। इस योजना की पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। मुख्य विशेषताएं और लाभ इस प्रकार है कि मृत्यु पर वित्तीय सहायता, यदि योजना अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से बीमारी हो, दुर्घटना हो या फिर किसी प्राकृतिक आपदा से मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार यानी कि नॉमिनी को 2 लाख की एक मुश्त राशि दी जाती है। इस योजना का वार्षिक प्रीमियम मात्र 436 प्रतिवर्ष यानी कि 1.50 प्रतिदिन से भी कम है। ये केवल एक बीमा कवर है। यदि पॉलिसी धारक सुरक्षित रहता है तो पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर कोई मैच्योरिटी बेनिफिट या पैसा वापस नहीं मिलता है। ये बीमा 1 जून से 31 मई तक 1 वर्ष के लिए वैध होता है, जिसे हर साल रिन्यू करना पड़ता है। आवेदन करने वाले की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एक बार जुड़ने के बाद नियमित प्रीमियम भुगतान के साथ 55 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा कवर मिलता रहता है। आवेदक के पास किसी भी बैंक या डाकघर में सक्रिय बचत खाता होना अनिवार्य है। प्रीमियम राशि हर साल 25 मई से 31 मई के बीच आपके बैंक अकाउंट से अपने आप कट जाती है। इसके लिए आपको बैंक को सहमति देनी होती है। यदि आपके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं, तब भी आप केवल एक ही खाते से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में शामिल होने के पहले 45 दिनों तक सामान्य यानी कि मृत्यु पर क्लेम नहीं मिलता। हालांकि यदि मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है तो ये नियम लागू नहीं होता और पहले दिन से ही पूरा क्लेम मिलता है। इस योजना को लेने के लिए किसी भी तरह की मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होती। आपको केवल अच्छे स्वास्थ्य का एक स्व घोषणा पत्र देना होता है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और नॉमिनी की जानकारी ये होना अनिवार्य है और आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक भी होना चाहिए। आप अपने इस बैंक की शाखा या डाकघर में जाकर आवेदन कर सकते हैं जहां आपका खाता है। अधिकांश बैंक अपनी इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए भी इस योजना में ऑनलाइन से जुड़ने की सुविधा देते हैं।
2: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का। 3 का तड़का 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर 3 का तड़का। 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर। रेनबो

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अब्बास मस्तन की फिल्म रेस, और सुनिधि और नीरज की आवाज में ये गीत चल रहा था। समीर के बोल थे, संगीत प्रीतम का दिया हुआ था। वैसे दोस्तों 3:25 हो चुके हैं और वक्त बातों का नहीं बिल्कुल गीतों का है, क्योंकि समय अपनी गति से बहुत ही तेज चल रहा है। सुनते हैं के और शान की आवाज में फिल्म 10 से ये गीत, और इसी के साथ इसी के बाद हम सुनेंगे दिल्ली से कार्यक्रम NCERT से उमंग। आइए सुनते हैं ये गीत के और शान की आवाज में।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का। टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर। रेन्बो।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
3: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
2: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गाँव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
3: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा बसंतीबाई और गणेश शिवदे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है, और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए
2: जी।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग
2: जी।
3: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
2: बिल्कुल।
3: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
2: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं, ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
3: श्रोताओं, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
2: तो करते हैं शुरुआत कहानी की
3: जी।
2: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
3: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया
2: जी।
3: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
2: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता, और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
3: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है
2: जी।
3: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
2: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ, वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
3: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
2: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं, इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजी जी, फिर क्या हुआ, क्या बाज कभी उड़ पाया?
3: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा
2: जी।
3: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी
2: जी।
3: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था
2: जी।
3: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
2: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
3: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते
2: जी।
3: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो
2: जी,
3: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
2: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
3: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
2: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा, जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
3: और श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
2: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
3: तो हम कहना चाहते हैं,
2: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
3: आप हैं।
2: बिल्कुल,
3: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं। यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं, और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की।
3: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
3: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं।

0: कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
1: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
0: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूं तुम्हारी दोस्त झुमकी।
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: नमस्कार।

0: तो झुमके, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमके क्यों?
1: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
4: रखो तुम नल हर दम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
5: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
6: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
1: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
6: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक है।
1: बताओ।
6: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
6: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
0: हाँ,
1: बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
6: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार
2: तालियां।
0: अच्छा, अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
3: मेरे पास
6: बहुत बड़ी पैसे।
0: अरे वाह।
1: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना? बोलो। जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
3: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता? लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
1: आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: तो,
1: चलिए
0: शुरू हो जाओ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए।
4: ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चों, अब तुम्हारी बारी है।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
7: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह के मजामीन शाये हुए थे। हसरत मोहानी ने इसके जरिए कौमी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कामिल आजादी की आवाज बार बार बुलंद की। वो आजादी के मतवाले थे। अंग्रेजी हुकूमत की उन्होंने खुलकर मुखालफत की और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। अप्रैल 1908 के उर्दुए मौल्ला में एक मजमू

0: मथुरा कि नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, बरसाना ओ नंदगांव में भी देख आए हैं जलवा हम किसी का। पैगाम हयात जाविदा था हर नगमा कृष्ण बांसुरी का।
1: अंग्रेज हुकूमत को हसरत मोहानी की सियासी सरगर्मियां कतई पसंद नहीं थी। 1913 में उनका प्रेस जब्त कर लिया गया। 1916 में उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। 1918 में रिहाई मिली तो आजादी की जिद्दोजहद में फिर मसरूफ हो गए। हसरत मुकम्मल आजादी का मुतालबा करने वाले हिंदुस्तान के पहले मुजाहिदे आजादी थे। हसरत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। 1942 में हसरत कानपुर से यूपी असेंबली के मेंबर चुने गए और फिर पार्लियामेंट के मेंबर हुए। तहरीके आजादी के सिलसिले में उन्हें रईसुल एहरार के लकब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फिरंगी महल लखनऊ के कब्रिस्तान अनवारे बाग में दफन है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम हसरत मोहानी, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: 107 एफएम रेनबो पे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, रिंकू के साथ आप सुन रहे हैं छायालोक। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम सुपर हिट सेल्यूलॉइड।
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स।
0: जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि खुशरा दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया जो किया सो पार। जी हाँ, हम आज की इस फ्राइडे के शो पे 107 एफएम रेनबो पे उन सभी गीतों को आपके साथ लेकर आए हैं जिसे आप बेकरारी से सुनने को तैयार है, क्योंकि ये है छायालोक। आइए सुनते हैं और शुरुआत करते हैं छायालोक को इन मीठे मीठे गीतों के साथ।
2: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला छायालोक।

जी हाँ दोस्तों, सिर्फ लफ्जों में बयां हो वो जज्बात नहीं होता, हर कोई इस दिल के आलम से वाकिफ नहीं होता। जब बजती है ये आशिकी की खूबसूरत धुनई हवाओं में, तो पुरानी यादों का सवेरा कभी रात नहीं होता। और आप सुन रहे थे अभिषेक बच्चन, सुनिधि चौहान की आवाज में, फिल्म ब्लफ मास्टर से ये गीत, विशाल और शेखर के लिखे गीत और विशाल और शिखर के लिखे संगीत के साथ। इस धुन के साथ 107 एफएम रेनबो पे हमने बजा दी है इसी सारी इस तरह की दीवानीदार धमाकेदार गीत। और अगला गाना यार रहमान और नरेश अय्यर की आवाज में सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, ए आर रहमान और नरेश अय्यर की आवाज में आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म से ये गीत। गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने, और रहमान ने खुद ही अपने हाथों से गीत के बोल सजाए थे। वैसे नजरों से नजरों का इकरार होता है और हर नया गाना दिल के पार होता है। यूं तो रोज मिलते हैं हजारों लोग दुनिया में, पर जिससे धड़कन थम जाए वही तो सच्चा प्यार होता है। दोस्तों 107 एफएम रेनबो पे हम आपके लिए ऐसे ही बेकरार और बेहतरीन गाने लेकर आए हैं। चलिए एक और गीत मरियम टॉलर और चिन्मयी कृति की आवाज में फिल्म गुरु से।

0: Android Super Hits.
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मरियम टॉल और चिन्मयी और कृति की आवाज में फिल्म गुरु से ये गीत। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीत से सजाया था AR रहमान ने। वैसे तो दोस्तों AR रहमान और गुलजार की जोड़ी क्या खूब जमती है। उनके शब्द और इनका संगीत दोनों का मेल एक साथ FM रेनबो पर ही सुनने को मिलता है। आए एक और गीत शान और कैलाश खेर की आवाज में।

0: जिक्र जब आपका हुआ तो महफिल में उजाला हो गया, दिल का धड़कना जैसे एक हसीन अफसाना हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो चांद तारों से हुस्न की मुलाकात करते हैं और हसीनों की तारीफ में तो सब कुछ कम ही लगता है। शान और कैलाश खेर की आवाज में चांद सिफारिश, ये गाना फिल्म फना से और गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने, संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। वैसे 107 एफएम रेनबो में आप सुन रहे हैं
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लो 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छाया लो

जी हाँ दोस्तों, ये गाना फिल्म गैंगस्टर लव स्टोरी यानी कि 2006 में रिलीज हुई अनुराग बासु की डायरेक्ट की हुई फिल्म थी। इस फिल्म से कंगना रनौत ने बॉलीवुड में अपना शानदार डेब्यू किया था और उनके साथ फिल्म में इमरान हाशमी

और शाइनी आहूजा भी थे। वैसे इस गीत के बारे में हम बता दें कि इस गाने को बांग्लादेश के मशहूर रॉक सिंगर जेम्स फारूक महफूज अनाम ने गाया था। उनकी कमाल की सूफी रॉक और भारी आवाज ने इस गाने को अमर बना दिया। ये गाना प्यार में अकेलेपन, उदासी और अधूरी दास्तान को बयां करती है। वैसे ये गाना मूल रूप से प्रसिद्ध बंगाली रॉक बैंड मोहिनेर घोरागुली के गाने पृथ्वी वाता ना की छोटो होते होते की धुन पर आधारित था, जिसे प्रीतम ने हिंदी में बेहद खूबसूरती से रिक्रिएट किया। आइए सुनते हैं एक और गीत के और शौर्य घोषाल के साथ में विशाल डडलानी।

गीतों ने। वैसे दोस्तों, इन गीतों के पीछे जो कहानियां और म्यूजिक का तालमेल रहता है ना, उन्हीं वही उन गीतों को बहुत ही पीछे से आगे से धक्का मारते हैं, क्योंकि वही तो इंजॉय करवाते हैं हमारे साथ। और म्यूजिक के साथ हम अपनी बातों को बोलो के साथ में पिरो के आनंद ही आनंद मनाते हैं। आइए सुनते हैं अगला गाना आतिफ असलम की आवाज़ में।

जी हाँ दोस्तों, के एंड श्रेया घोषाल और साथ में विशाल डडलानी की आवाज में ये फिल्म तरारम पंप से ये गीत, और गीत को मशहूर आवाज से नवाजा था जावेद अख्तर के लिखे गीतों ने, और साथ में दिया था विशाल और शेखर के संगीत।

जी हाँ दोस्तों, अब सुन रहे थे आतिफ असलम को। जी हाँ, कलयुग फिल्म से। कलयुग फिल्म में कुमार खेमू ने अपनी दस्तक दी थी और बॉलीवुड में छा गए थे। वैसे इन गीतों के पीछे इन्हीं गीतकारों और संगीतकारों का ही हाथ है। और आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पे हमारे साथ छायालोक और सेलुलर सुपरहिट। 7:42 हो चुके हैं और घड़ी में अभी भी कुछ मिनट और है। मेरे साथ गुजारिए हमारे साथ आनंद की बातें और आनंदित गीत। लेकिन इसके बाद 8 के बाद देविका आएंगी। आज देविका इसके साथ आप सुनेगा। आइए सुनते हैं आशा भोसले को

जी हाँ, वैसे दोस्तों आशा भोसले की आवाज सुनकर भी नहीं लगती कि एक 60 वर्षीय महिला की आवाज होगी, लेकिन उन्होंने इस युग में भी, इस दौर में भी गाकर ये साबित कर दिया कि आवाज कोई भी एज को मात दे सकती है। उन्होंने अपनी चंचलता और अपनी बखूबी अंदाज से लोगों को आज भी यंग जनरेशन के साथ मैच कराते हुए गीत गाए और हमें वैसे ही खुश रखा जैसे कि उन्होंने हमेशा रखा था। आइए सुनते हैं अंकित तिवारी की आवाज में एक और गीत फिल्म एक विलन से।

जी हाँ दोस्तों, एक विलन से आप सुन रहे थे ये गीत, मनोज मुंतासिर की लिखे हुए बोल और संगीत से सजाया था अंकित तिवारी ने, गीत भी गा रहे थे अंकित तिवारी। दोस्तों वैसे स्टूडियो की घड़ी में 7:54 हो चुके हैं और 107 FM रेनबो पे आप सुन रहे थे रिंकू के साथ ये गीत भड़े गाना यानी कि 6 लोग सेल्यूलर सुपर हिट्स में। वैसे दोस्तों गीतों के ये सिलसिला तो जारी रहेगा ही, क्योंकि 8 बजे आरजी देवी का आपके साथ होंगी, लेकिन मैं भी जाते जाते आपको बिनी दयाल और नीति मोहन की आवाज में फिल्म बैंग बैंग से ये गीत सुना देती हूँ। इसी साथ रिंकू को इजाजत दीजिए, नमस्कार।

Celluloid Super Hits. पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छाया लोग। छाया लोग

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:10 और 16 सेकंड। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकली ऑर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका, लेकर कार्यक्रम जिसका नाम है जी हाँ छाया लोक और 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकली ऑर्स पर आप सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को मेरे साथ, जहाँ पर मैं आपके लिए बेहतरीन तरानों के नजराने लेकर आई हूँ। फिलहाल सोनू निगम की आवाज़ में आपने सुना इस गीत को, और अगला तराना शान श्रेया घोषाल और सुजैन की आवाज में, फिल्म का नाम वांटेड।

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे इस गीत को, दीवानी मस्तानी, बाजीराव मस्तानी फिल्म से ये गीत था, श्रेया घोषाल के साथ गणेश चंदन शिवे की आवाज में। और आपको बता दें 107 FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स में इस गीत को आप सुन रहे थे फिल्म बाजीराव मस्तानी से। और स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 8:21:50। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट देविका, लेकर इस कार्यक्रम को जिसका नाम क्या है, जी हाँ, छायालोक। और छायालोक में आप सभी के लिए और भी दो बेहतरीन तराने बैक टू बैक, आइए सुनते हैं कुमार सानू और जसविंदर नरोला की आवाज में ये अगला गीत जिसे आप सुनेंगे फिल्म विरासत से।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ऐश किंग की आवाज़ में इस गीत को फिल्म दृश्यम से। दृश्यम गीत का ये बेहतरीन तराना फैमिली लव के साथ आपने सुना 107 FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकली। और इस पर अगली आवाज़ आशा भोसले के साथ उदित नारायण की।

फिल्म रामलीला से आप सुन रहे थे अदिति पॉल के साथ साहिल हाडा की आवाज में ये गीत। अगला गीत आप सुनेंगे ए दिल है मुश्किल। आइए सुनते हैं ए दिल है मुश्किल फिल्म से टाइटल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज में।

वेल फ्रेंड्स, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है कि आपसे लूं विदा। 8:55 हैं स्टूडियो की घड़ी में समय और आप सुन रहे 107 FM रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स। चलते चलते अरिजीत सिंह के साथ शाश्वत सिंह की आवाज़ में ये गीत देविका लेती है आपसे इजाजत। गुड नाइट, शब खैर।

0: लव शॉर्ट्स से आज सुन ले बिहुर लेखा प्रेम ऑन एयर गल्पे नरेशने आत्रेयो अहुना देवारुती अर्को राजीव रेडियो जॉकी अरिजित।
1: Every Friday at 9 p.m. only on 107 FM Rainbow.